उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: We'll be right back after this short commercial break.
1: Stay tuned.
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: This is FM 101.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: This is FM 101.

0: We'll be right back after this short commercial break.
1: Stay tuned.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
3: 101 FM।
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: This is FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: This is a fun one.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.1.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है

0: आप सुन रहे हैं FM 101।
1: ओ हर फन माला ओ हो जाएगा मोमिन, हक जदो सीने लाया दिल होया रोशन।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म जाहिर किया है। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के शमसी तवानाई के मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की है। पाकिस्तान और बरतानिया ने पायदार इक्तसादी तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम के फरोग के लिए 2 तरफा करीबी तआवुन मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया है। और खैबर पख्तूनख्वा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से सूबे भर में बारिश, तेज हवाओं और जालाबारी का इंतबाह जारी किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाए तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के माली अपग्रेडेशन के लिए माली मुआवनत फ्राहम की जाएगी, जिससे 2500 नई मुलाजमतें पैदा होंगी और वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदाद में इजाफा होगा। सिरेमिक सेक्टर में 25 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात इंस्टीट्यूट को जदीद भट्टियों और टेस्टिंग सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा, जबकि फैन सेक्टर में 70 करोड़ रुपए की लागत से समड़ियाल मटेरियल टेस्टिंग लैब कायम की जाएगी, जिससे यूरोपी और दीगर रेगुलेटेड मंडियों तक रसाई आसान होगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सनअती बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 35 अरब रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल इस्टेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद, विहाड़ी, रहीम यार खान और बहावलपुर में सनअती इस्टेट्स की तरक्की की जाएगी, जिससे 1000 से ज़ायद नई सनअती इकाइयाँ, 80 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी और 40,000 से ज़ायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मज़ीद बरां 20 अरब रुपए की लागत से क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए बरामदी क्लस्टर्स में मशीनरी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की 100% माली मुआवनत फराहम की जाएगी। सनअती शोबे की पैदावार, तरक्की, माहौलियाती मियार की पासदारी और बैन अलावामी मंडियों तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए आइंदा माली साल में 25 अरब रुपए की लागत से कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पैकेज भी मुतारिफ कराया जा रहा है। इस इकदाम के तहत 4 सनअती स्टेट्स में 70 MGD वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इस्तेदाद पैदा की जाएगी। सूबे के मादनी वसाइल से ज़्यादा मुआशी फ़ायदा हासिल करने के लिए CM पंजाब वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग फॉर पिंक सॉल्ट प्रोग्राम के लिए 1,50,00,000,000 रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ है। इस इकदाम के तहत पिंक सॉल्ट से वाबस्ता 200 मादनी व सनअती इदारों को रियायती माली मुआवनत फराहम की जाएगी। ज़रात, लाइफ स्टॉक और आबी ज़रात पंजाब की मईशत, गज़ाई तहफ़ुज़ और दही रोज़गार और बरामदाद के फ़रोग़ के बुनियादी सतून हैं। जनाब स्पीकर, इन शोबों की इस्तेदाद कार को बरूए कार लाने और इन्हें मुआशी तरक्की के मुहर्रक में तब्दील करने के लिए हुकूमत पंजाब ने आइंदा माली साल में तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 132,54,00,000,000 रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि आइंदा आने वाले 3 सालों में हुकूमत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इकदाम के तहत ज़रई वैल्यू एडिशन, लाइव स्टॉक वैल्यू स्ट्रीम और आबी ज़रात के शोबों में हुकूमती सरमायाकारी तकरीबन 481 अरब रुपए होगी, जिसके नतीजे में निजी शोबे की जानिब से 134 अरब रुपए की इजाफी सरमायाकारी मुतवक्के है, जबकि इन शोबों में मजमू सरमायाकारी का हजम 615 रुपए से तजावज कर जाएगा। इस सरमायाकारी के जरिए पैदावार, वैल्यू एडिशन, बरामदाद, रोजगार और दही खुशहाली के नए मौके पैदा किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, किसानों की माली मुआवनत के लिए किसान कार्ड प्रोग्राम एक अहम संग मील साबित हुआ है। रवां माली साल में 9,86,00,000,000 रुपए की लागत से 8,25,000 किसानों को 251 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए गए, जिनकी रिकवरी का तनासुब 99% है। इस प्रोग्राम के तसलसल में आइंदा माली साल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसके ज़रिए 10 लाख किसानों को खाद, बीज, ज़रई अद्वियात और दीगर ज़रई आलात की खरीदारी के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 साल में

0: मकसद के लिए 350 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम करके एक तारीख रकम की है। पंजाब में जमीन से महरूम अफराद को आसान शरायत पर सरकारी जमीन लीज पर देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन मंजूर की है। इस प्रोग्राम के तहत 5 एकड़ तक जमीन मुस्तक अफराद को फराहम की जाएगी। मैं यहाँ इस बात का फख्र से ऐलान करना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत ने ना सिर्फ गंदम के डोमेस्टिक डेट को ख़त्म किया बल्कि किसानों के तहफ्फुज़ के लिए गंदम की मुनासिब कीमत की फराहमी को भी यकीनी बनाया। इस सिलसिले में रवां सीजन में किसानों को गंदम की कीमत 3500 फी मंथ से भी ज़्यादा मिली, जिससे किसान ना सिर्फ खुशहाल हुआ बल्कि पंजाब की फूड सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया गया। मजीद बरां पिछले 20 सालों में किसानों को सिर्फ 10,000 ट्रैक्टर दिए गए, जबकि हमारी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में 25,000 ट्रैक्टर दिए हैं, जो कि हमारी किसान दोस्त पॉलिसी का अमली मज़हर है। ज़रई मैकेनाइजेशन के फरोग के लिए ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत रवां माली साल में 5 अरब रुपए की लागत से 9900 किसानों और 9 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 9300 किसानों को हाई पावर ट्रैक्टर फराहम किए गए। इसी तरह इस प्रोग्राम के अगले मरले में 7 अरब रुपए की लागत से 10,000 ग्रीन लो पावर ट्रैक्टर, जबकि मजीद 9 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 6500 हाई पावर ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। 7 अरब 81 करोड़ रुपए के वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के जरिए 1,50,000 किसान मुस्तफीद हुए, जबकि 8 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत से सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल प्रोग्राम के तहत 7,086 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तसलसल में आइंदा माली साल के दौरान 36 अरब 12 करोड़ रुपए के पंजाब क्लाइमेट रिजिलिएंट एंड लो कार्बन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत छोटे काश्तकारों को जदीद ज़रई मशीनरी तक रसाई फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान ज़रई मशीनरी के फ़रोग के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने महज 2 बरसों में 60 अरब रुपए मुख्तस करके जदीद मशीनरी के इस्तेमाल को नई रफ्तार दी है। ज़रई शोबे में इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए रवां माली साल में 2 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत से इंटर्नशिप स्कीम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के तहत 1661 नौजवानों को अमली तरबियत फराहम की गई, जबकि आइंदा माली साल में 2 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 3000 ज़रई ग्रेजुएट्स को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इसी तरह किसानों को एक ही छत तले जदीद ज़रई सहूलियात की फराहमी के लिए आइंदा माली साल में 1.82 अरब रुपए की लागत से मजीद 10 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स कायम किए जाएंगे। पंजाब में इस नौयत का मुनफरद और इनकलाबी कदम पहली दफ़ा उठाया गया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत सरगोदा, खानेवाल, उकाड़ा और बक्कर में एग्रो प्रोसेसिंग पार्क्स के क्याम पर 60 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके ज़रिए अगले 3 सालों में 500 से ज़ायद नई सनतें कायम होंगी, 20 अरब रुपए से ज़ायद निजी सरमायाकारी आएगी और तकरीबन 20,000 बराह रास्त बिलवास्ता रोज़गार के मौके फ्राहम होंगे। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए 135 अरब रुपए के प्रोग्राम से ज़रई पैदावार में 120 अरब रुपए के इजाफी फ़ायद हासिल होंगे। ज़रई मशीनरी की दरामदाद में 70% तक कमी आएगी और 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतवक्के है। वीट वैल्यू एनहेंसमेंट की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए के मंसूबों के जरिए सालाना 289 मिलियन डॉलर की इजाफी मुआशी कदर पैदा होगी। 2 लाख किसान मुस्तफीद होंगे। किसानों की आमदन में 30 से 50% इजाफा होगा और फसल के बाद होने वाले नुकसान में नुमाया कमी आएगी। अलावा अजी आम कीनू और आलू प्रोसेसिंग के मंसूबों पर 15 अरब रुपए की सरमायाकारी के नतीजे में 20,000 से ज़ायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक होगी और 200 मिलियन डॉलर की इजाफी बरामदात हासिल होंगी। मैंने कहा आपको थोड़ा सा मौका दे देता हूँ, कोई आवाज़ आपकी बिल्कुल बंद हो गई थी, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था तकरीर का। ज़रा आपका शोर होता ना तो मुझे भी तकरीर कर आपका शोर होता है तो मुझे भी मज़ा आता है तकरीर करने का। जनाब स्पीकर, 5 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से CM पंजाब हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टू इन्हेंस लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के जरिए जानवरों की नस्ल और पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के इकदाम किए गए। 2 अरब रुपए की लागत से 4,385 दही खवातीन को लाइव स्टॉक सासे फ्राहम किए गए। इन इकदाम के तसलसल में आइंदा माली साल के लिए 4 अरब 44 करोड़ की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड फेज 2 के तहत 3 लाख मवेशी पाल हजरात को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। लाइफ स्टॉक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 3 अरब 12 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 देही खवातीन में दूध देने वाले जानवर तकसीम किए जाएंगे। मवेशियों की सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब 5 करोड़ रुपए की लागत से 146 वेटनरी हॉस्पिटल्स की बहाली और 10 अरब 17 करोड़ रुपए की लागत से 482 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज की तजवीज भी शामिल है। जबकि 1 अरब रुपए से 2,40,000 मवेशी पाल हजरात को जदीद तरीका है परवरिश और कारोबारी महारतों की तरबियत देने के लिए मुख्तस किए गए हैं। मवेशियों की सबसे मौलिक फुट एंड माउथ डिजीज के तदारुक के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत से प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत बहावल नगर में FMD फ्री जोन के क्याम पर अमल दरामद जारी है। 61 करोड़ रुपए की लागत से इंटर्नशिप मुहैया की गई जिससे 1,000 ग्रेजुएट्स मुस्तफीद हुए। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत लाइव मीट प्रोग्राम से गोश्त की वैल्यू एडिशन के लिए 19 अरब 10 करोड़ रुपए की हुकूमती मावनत से 85 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक होगी। गोश्त की बरामदात में 200% इजाफा, 15,000 से ज़ायद रोजगार के मौके और बाद ज़िबा नुकसानात में 8 से 12% कमी मुतवक्के है। अलावा अजीम लाइव मिल्क प्रोग्राम के तहत दूध की पैदावार और प्रोसेसिंग के फरोग के लिए 25 अरब 90 करोड़ रुपए के प्रोग्राम के जरिए बरामदात में 3 गुना इजाफा, बरामदी बिल में 40 मिलियन डॉलर की कमी, किसानों की आमदन में 2 गुना इजाफा मुतवक्के है। जनाबे स्पीकर, पंजाब एक्वाकल्चर एंड फिशरीज महकमे की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 173 अरब के जामे प्रोग्राम पर अमल पैरा है, जिसके तहत 2 श्रिम्प स्टेट्स, शाहगढ़ श्रिम्प रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 3 एक्वाकल्चर मॉल्स, श्रिम्प फार्मिंग फिजिबिलिटी, 4 एक्वा बिजनेस हब्स और हैचरीज समेत मुतअद्दिद मंसूबे जारी हैं, जबकि नए इकदामात में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विजन के तहत आप भी ज़राअत के फरोग के लिए 80 अरब रुपए की सरकारी सरमायाकारी से 3 फिश मार्केट्स, एक्वा बिजनेस हब्स और श्रिम्प स्टेट्स कायम की जाएंगी, जिसके नतीजे में 30 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी होगी, जबकि सालाना 235 मिलियन डॉलर से ज़ायद मालियत की पैदावार और बरामदी आमदन हासिल होगी। ये तमाम इकदामात इस अमर का मज़र हैं। हुकूमत महदूद वसाइल को तरक्की, बरामदात, रोज़गार और निजी सरमायाकारी के नए मौके में तब्दील कर रही है। इसके अलावा नेचर इनक्लेव ग्रीन बिल्डिंग, लाहौर मॉडल फिश मार्केट, मरी ट्राउट हैचरी की अपग्रेडेशन के मंसूबों पर अमल दरामद होगा। इन मंसूबों के जरिए मछली और झींगे की पैदावार, बरामदात, निजी सरमायाकारी, वैल्यू एडिशन, फूड सिक्योरिटी, एक्वा टूरिज्म, रोजगार के हजारों नए मौके पैदा होंगे, जिससे पंजाब को जदीद पायदार और एक्सपोर्ट पर मबनी एक्वा कल्चर मुईशत का मरकज बनाया जा रहा है। हमारी हुकूमत ने अफरादी कुव्वत की अहमियत को समझते हुए नौजवानों को फनी महारतें और दीगर सहूलियात मुहैया करने के लिए जो पहला कदम उठाया गया वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की 80/9 तश्कील थी। इस शोबे से मुतालिक तमाम अथॉरिटीज और ऑटोनमस बॉडीज को इस महकमे में यकजा किया गया। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्किल्स की मुकम्मल मैपिंग की गई ताकि मुयस्सर मनसूबा बंदी की जा सके। हमने मजमूई तौर पर 2 लाख से ज्यादा नौजवानों को महारत से आरास्ता करके रोजगार हासिल करने में मदद फराहम की है। माली साल 2025-26 में टेवटा की ज़ेर निगरानी हॉस्पिटैलिटी लेबोरेटरीज की तोसी, बैरून मुल्क रोजगारी के फरोग और नए फनी इदारों के क्याम के मंसूबे शामिल रहे। CM स्किल्स डेवलपमेंट मंसूबे के तहत 5,165 अफराद को IT कोर्सेज की तरबियत फराहम की गई, जबकि तामीराती और हॉस्पिटैलिटी लैब्स की तोसी के मंसूबे से आइंदा साल मजीद 4,450 अफराद मुस्तफीद होने की तवक्को है। इसी तरह ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मंसूबे के तहत 2,000 हुनरमंद नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माली साल 2025-26 के दौरान PVTC ने सालाना तरबीती तादाद को 60,000 नौजवानों से बढ़ाकर 75,000 नौजवानों तक पहुंचाया। 12 शोबों में 5,677 लेबोरेटरीज को अपग्रेड किया गया। 4,859 तरबियत याफ्तगान से मुख्तसर दुरानिये के कोर्स में दाखिला लिया। 100 से ज़ायद सनतों के इश्तराक से वर्क बेस्ड ट्रेनिंग के तहत 1,600 से ज़ायद तरबियत याफ्ता नौजवानों ने दाखिला लिया। जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को जदीद और मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग फनी व पेशा वराना तरबियत फराहम करने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 5,000 नौजवानों ने फायदा उठाया है। 1 अरब 44 करोड़ रुपए की लागत से सीएम स्किल्ड पंजाब प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बरूने मुल्क रोजगार हासिल करने के मौके फराहम किए गए। इस मंसूबे से अब तक 2,200 अफराद फायदा उठा चुके हैं। स्किल्स फॉर ऑल इकदाम के तहत खसूसी अफराद, खवातीन और कमजोर तबकात के लिए जामे तरबियती प्रोग्राम पर अमल दरामद किया गया। प्रवास कार्ड स्कीम फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट के तहत 45,000 नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के हसूल के लिए बिला सूद कर्जों की सहूलत 6 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से फ्राहम की जा रही है। इस इकदाम के तहत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के कर्जे फ्राहम किए जाएंगे। इस सिलसिले को मजीद मुअसर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब ने 3 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत से लैंग्वेज स्किल प्रोग्राम मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसके तहत 30,000 नौजवानों को बैनुल अक्वामी रोजगार की ज़रूरियात के मुताबिक ज़बानों की तरबियत फराहम की जाएगी। पंजाब की सनअती तरक्की, बरामदाद में इजाफे और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए पंजाब इंडस्ट्री क्लस्टर एकेडेमिया लिंकेजेस प्रोग्राम पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है। इस इकदाम के तहत 25,000 नौजवानों को अहम सनअती शोबों के लिए तैयार किया जाएगा। डिजिटल इकॉनमी में पंजाब के नौजवानों को आलमी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाने के लिए 1 अरब 46 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम 2 के तहत 7,500 नौजवानों को क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI, डाटा एनालिसिस और दीगर टेक्नोलॉजीज में तरबियत फराहम की जाएगी, जबकि BPO प्रोग्राम के तहत 10,000 नौजवानों को क्लस्टर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस, आउटसोर्सिंग और आलमी खिदमात के शोबे के लिए तैयार किया जाएगा। 1 अरब रुपए की लागत से खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और डिजिटल शमूलियत के फ़रोग के लिए एम्पावरिंग रूरल वुमन बाय वे ऑफ IT के तहत 15,000 देही खवातीन को जदीद डिजिटल महारतों, ऑनलाइन रोज़गार, ई कॉमर्स और फ्री लेंसिंग के मौके से मुंसलिक किया जाएगा। मुस्तकबिल की ग्रीन इकॉनमी के तकाजों को मद्देनज़र रखते हुए स्किल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2 अरब 89 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 20,000 नौजवानों को काबिले तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के मुअस्सर इंतज़ाम, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और दीगर उभरते हुए ग्रीन शोबों में तरबियत फराहम की जाएगी। तरक्की के समरात को माशरे के हर फर्द तक पहुँचाने के लिए उम्मीद स्किल्स फॉर इंक्लूजन प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके ज़रिए 10,000 खसूसी अफराद और ख्वाजा सरा अफराद को मार्केट से मुंसलिक महारतें, रोज़गार, खुद रोज़गारी और माली शमूलियत के मौके फराहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम की लागत 1 अरब 58 करोड़ रुपये है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की विजन के तहत हुकूमत स्किलिंग पंजाब प्रोग्राम भी मुतारिफ करवा रही है, जिसके तहत स्किल्स फॉर डोमेस्टिक नीड्स के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके ज़रिए यूरोपियन क्वालिफिकेशन और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्रेमवर्क से हम आहंग तरबियती निज़ाम और जदीद वोकेशनल इदारों के ज़रिए आइंदा 3 साल में 1,62,000 से ज़ायद इजाफी अफराद को तरबियत फराहम की जाएगी। इसी तरह स्किल्स फॉर ग्लोबल नीड्स के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत प्रवास कार्ड, तामीरात, सेहत और ऑटोमेटिव समेत 12 बैन अल-अक़वामी मियार के प्रोग्रामों के ज़रिए 2,40,000 अफराद को आलमी मंडियों के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी, जिससे सालाना तरसीलात ज़र में 468 मिलियन डॉलर इजाफे की तवक्को है। टेक्नोलॉजी और जिद्दत के फरोग के लिए फ्रंटियर टेक स्किल इनोवेटिव पंजाब के तहत 12,30,00,000,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिसके ज़रिए जदीद LMS प्लेटफॉर्म, इनक्यूबेटर्स, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत 60,00,000 तरबियत याफ्ता अफराद, 15,00,000 फ्रंटियर टेक ग्रेजुएट्स और 1,200 स्टार्टअप्स की मावनत की जाएगी, जबकि ख्वातीन की शिरकत कम अज़ कम 40% रखी जाएगी। मज़ीद बरां एक्सेलरेट पंजाब एंड टेक स्किल्स प्रोग्राम के लिए 19,70,00,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत बोर्ड कैंपसेस, वज़ीर-ए-आला IT इंटर्नशिप प्रोग्राम, मेकर स्पेस और बैन अल-अक़वामी IT सर्टिफिकेशन के ज़रिए 70,500 से ज़ायद नौजवानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। इनकी मुतवक्के महाना आमदन 1,00,000 से 1,20,000 रुपये तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। मजीद बरां शदरा लाहौर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज 99,00,000 रुपये की लागत से कायम किया जाएगा। इस मरकज में हर साल 400 तरबियत याफ्ता अफराद को बैन अल-अक़वामी मियार की तरबियत दी जाएगी। आइंदा माली साल में 7,40,00,000,000 रुपये की लागत से तामीराती शोबे के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी की गर्ज से मंसूबा तजवीज़ किया गया है, जिसके तहत पंजाब भर में 67 नई लेबॉरटरीज कायम की जाएंगी और आइंदा 3 बरसों में 22,200 अफराद को बैन अल-अक़वामी मियार की तरबियत और सर्टिफिकेशन फ्राहम की जाएगी। मजीद बरां हॉस्पिटैलिटी और सेहत के शोबे में तरबियत फ्राहम करने के लिए 3,96,00,000,000 रुपये की लागत से 60 नई लेबॉरटरीज कायम की जाएंगी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन BPOs प्रोग्राम 3,00,00,000 रुपये की लागत से शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत 5 साल के दौरान 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम की जाएगी, जबकि माली साल 2026-27 में 5,000 तरबियत याफ्तगान को का हदफ मुकर्रर किया गया है। जनाब स्पीकर, अवाम को पीने के साफ पानी और सैनिटेशन की सहूलियात की फराहमी के लिए माली साल 2026-27 में तरक्की और गैर तरक्याती अखराजात की मद में मजमूई तौर पर 507 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 187.10 करोड़ रुपये तरक्याती अखराजात की मद में हैं, जिनके मुस्बत इस्तेमाल से मजबूत बल्दियाती निज़ाम, मुतवाजन इलाकाई तरक्की और पंजाब के शहरियों और देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इकदामात किए गए हैं, जिनकी तफसील दर्ज ज़ैल है। 45 अरब रुपये की लागत से पंजाब भर के 18 अजला में साफ पानी प्रोग्राम के तहत साफ़ और महफूज पीने के पानी की फराहमी के मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। यह मनसूबा आइंदा माली साल में 8 अरब रुपये की लागत से अगले बजट का हिस्सा है। इस मनसूबे के तहत 5,600 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे अवाम को पीने का साफ पानी मुहैया हो सकेगा। पंजाब के तमाम प्लांट्स को डिजिटली जियो टैग किया जा रहा है। साफ पानी से मुतल्लिक अवाम की शिकायत के इजाले के लिए 1336 डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी कायम की गई है। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट तकरीबन 96,20,00,000,000 रुपये की लागत से पंजाब के 16 अजला के तकरीबन 2,000 देहात में जारी है। इन मनसूबों के अलावा आइंदा माली साल में रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम का 300 अरब रुपए की लागत से आगाज किया जा रहा है। एक और अहम इकदाम, चीफ मिनिस्टर वाटसन प्रोग्राम का है, जो 4 अरब रुपए की लागत से मुतारिफ कराया जाएगा, जिसका मकसद अवाम को पानी की फरहमी और सफाई सुथराई की बेहतर सहूलियात मुहैया करना है। 137 अरब रुपए की मजमूई लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद तेज़ी से जारी है, ताकि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलियात और बल्दियाती खिदमात की फरहमी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, जबकि आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे में सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनिंग सिस्टम, गलियों की पुख्तगी और मुतल्लिका बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 505 अरब रुपए की मजमूई लागत से पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का माली साल 2025-26 में आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम के पाया तकमील तक पहुंचने पर सूबे के 66 बड़े शहरों के अवाम इसके समरात से मुस्तफीद होंगे, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 31 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 59 अरब रुपए की लागत से मसाली गांव प्रोग्राम के ज़रिए पंजाब के 10 डिवीजन्स में 485 देहात को जदीद बुनियादी सहूलियात से आरास्ता मॉडल देहात में तब्दील किया जा रहा है। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। अलावा अजी 270 अरब रुपए की फरहमी से सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद किया गया, जिसके तहत सूबा भर की 12 करोड़ अवाम को बेहतर सफाई सुथराई की सहूलियात फराहम होंगी और माहौल को मजीद साफ और सेहत बख्श बनाया गया है। इस मंसूबे के लिए आइंदा माली साल में भी 170 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सुथरा पंजाब भी हमारी हुकूमत के इन अवाम दोस्त मंसूबों में से एक है, जिसको मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर पज़ीराई मिली। इस मंसूबे को COP30 जैसे बैन अल-अक़वामी इजलास में पेश किया गया। ब्लूमबर्ग, बीबी, अलावा जी अहम तरीन बैन अल-अक़वामी अखबारों और न्यूज़ चैनल जैसे कि ब्लूमबर्ग, BBC इस प्रोग्राम की अफादियत को तस्लीम किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 2 लाख से ज़ायद नौकरियां दी गईं। पंजाब की तारीख में पहली बार कूड़ा क्रिकेट के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाने के लिए वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। इस सारे प्रोग्राम को AI और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जदीद खतूर पर उस्तवार किया जा रहा है। इन सारे इकदाम की वजह से हालिया ईद के मौका पर सफाई में बेहतरी इस प्रोग्राम की कामयाबी का मजहर है, जिसके लिए तमाम सफाई का अमला सताइश के लायक है। बेघर और कम आमदनी वाले ख़ानदानों को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,73,000 हाउसिंग कर्जे जारी किए गए हैं, जबकि इस मकसद के हसूल के लिए 255 अरब रुपए सर्फ हुए हैं। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 1,01,000 से ज़ायद घर तामीर हो चुके हैं, जबकि 32,000 से ज़ायद घर ज़ेरे तामीर हैं। अगले माली साल के दौरान इस प्रोग्राम के तहत 2 लाख अफराद को 300 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने का मंसूबा है। यहाँ मैं इस समर का जिक्र करना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत के इस विजनरी प्रोग्राम को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पज़ीराई मिली है। हाल ही में बाकू में मुनक़िद वर्ल्ड अर्बन फोरम के इजलास में इस प्रोग्राम को सराहा गया, जो कि हमारी हुकूमत के लिए बायसे فخر ہے، وسائل کی عوام الناس پر ساری کھپت ہوگی، وسائل کی عوام الناس پر ساری کھپت ہوگی، یہاں سود و زیاں شفاف ہوگا اور بچت ہوگی، یہاں سود و زیاں شفاف ہوگا اور بچت ہوگی، ہر ایک مزدور کو اجرت ملے گی وقت پر اب، ہر ایک مزدور کو اجرت ملے گی وقت پر اب، ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا، ہر سر پر چھت ہوگی، ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا، ہر سر پر چھت ہوگی۔ اسی طرح اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت زمین کی فراہمی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 1 ارب 47 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں، جس کے تحت اب تک 2000 خاندانوں کو بلا معاوضہ پلاٹس فراہم کیے گئے۔ علاوہ ازیں 5 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم سسٹینیبل گولز پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ پائیدار ترقی کے اہداف اور عوامی فلاح کے منصوبوں کو مزید تقویت دی جا سکے۔ 62 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت پنجاب کے 10 درمیانے درجے کے اضلاع میں پانی کی فراہمی، سیوریج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر شہری خدمات کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ 64 ارب 48 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈیولپنگ ریزیلینٹ انوائرمنٹ اینڈ ایڈوانسنگ میونسپل سروسز منصوبہ راولپنڈی اور بہاولپور میں کامیابی سے جاری ہے۔ پنجاب بھر میں پارکس کے قیام، بحالی اور اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے خصوصی پروگرام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب پائیدار، جناب سپیکر، حکومت پنجاب پائیدار شہری ترقی اور جدید شہری انفراسٹرکچر کے فروغ کو خصوصی اہمیت دے رہی ہے۔ اسی مقصد کے تحت مالی سال 2025-26 میں پنجاب میں سڑکوں کی بحالی اور مرمت کے لیے 290 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے متعدد منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے، جن میں سڑکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرام، راولپنڈی رنگ روڈ، روڈ ریسٹوریشن پروگرام، روڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام فیز 2، قائد اعظم انٹرچینج، تواگا بارڈر روڈ، ملتان وہاڑی روڈ، فیصلہ آباد چنیوٹ روڈ اور راولپنڈی کے کچہری چوک اور فیصلہ آباد چنیوٹ روڈ کی اپگریڈیشن شامل ہے۔ مزید یہ کہ سڑکیں جو پچھلے مالی سال میں شروع کی گئیں، ان کی تکمیل کے لیے 36 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بھی اسی بجٹ میں شامل ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر پنجاب بھر میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 100 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم انیشیٹو فار روڈ انفراسٹرکچر متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے مختلف اضلاع میں سڑکوں کی تعمیر، بحالی اور اپگریڈیشن کے کام انجام دیے جائیں گے۔ جناب سپیکر، بڑھتے ہوئے آبی چیلنجز کے پیش نظر نہری نظام کی بہتری، پانی کے ضیاع میں کمی اور آپاشی کے ڈھانچے کی مضبوطی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی مقصد کے تحت مالی سال 2026-27 میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 30 ارب اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 31 ارب 14 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چند اہم منصوبوں کی تفصیل کچھ یوں ہے: رواں مالی سال میں آبی وسائل، آبپاشی اور سیلابی تحفظ کے لیے 95 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے جلال پور اریگیشن پروجیکٹ، نوراجہ بھٹا فلڈ پروٹیکشن بند، جلال پور پیر والا فلڈ پروٹیکشن بند، سورا ڈیم، تمان ڈیم، ڈھوچا ڈیم اور رحیم یار خان میں واٹر لاگنگ کے خاتمے کے منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز کیا گیا، جس سے 3 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی اراضی محفوظ اور قابل کاشت بنائی جا سکے گی، جبکہ آئندہ مالی سال میں 47 ارب روپے کی لاگت سے لنک کنالز کی بہتری اور بحالی، 8 ارب روپے کے امبریلا کنال لائننگ پروجیکٹ فیز 2 کے تحت 500 کلومیٹر ڈسٹریبیوٹریز اور مائنز کی لائننگ، 110 ارب روپے کے پوٹھو اور سمال ڈیمز کے پروگرام کے ذریعے 1,00,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش، اور 75,000 ایکڑ اراضی کو قابل کاج بنانے کے اقدامات اس بجٹ کا حصہ ہیں۔ مزید براں 12 ارب روپے کی لاگت سے لنک بی آر بی ڈی کی بحالی اور نئے راوی سائفن کی تعمیر کے ذریعے پانی کی دستیابی اور ماحولیاتی بہتری کو یقینی بنایا جائے گا۔ فلڈ ریزیلینس پروگرام کے تحت 51 اسکیموں کو 56 ارب روپے کی لاگت سے مالی سال 2026-27 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، 2025-26 کا سیلاب صرف قدرتی آفت نہیں تھا بلکہ ایک سبق آموز واقعہ تھا جس نے ہمیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے بہتر تیاری کی ضرورت کا احساس دلایا۔ حکومت نے جہاں لوگوں کو ریسکیو ریلیف آپریشن کے تحت مدد فراہم کی، وہیں ڈیٹا پر مبنی فلڈ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر اور مستقل حفاظتی اقدامات پر بھی سرمایہ کاری کی گئی۔ اس ٹیکنالوجی کے بعد حکومت پنجاب نے مستقبل میں آنے والے خطرات سے نپٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی طریقوں سے تمام نہروں، آپاشی کے نظاموں اور دیگر آبی ذرائع کی مکمل میپنگ کی تاکہ آئندہ ہر سیلاب سے پہلے مؤثر تیاری کی جا سکے۔ قدرتی آفات سے نپٹنے اور ہنگامی رد عمل کو استعداد میں اضافے کے لیے 1,35,00,000,000 روپے کی لاگت سے 1122 ریسکیو کو جدید فیڈر ریسکیو مشینری فراہم کی گئی، جبکہ مالی سال 2025-26 کے دوران ضلع انتظامیہ کو 4 ارب روپے اور پی ڈی ایم اے کو 63 کروڑ روپے کے ریلیف فنڈ جاری کیے گئے تاکہ سیلاب اور دیگر ہنگامی حالات میں بر وقت اور مؤثر امدادی کاروائیاں یقینی بنائی جا سکیں۔ اس کے علاوہ 7 ارب روپے کی لاگت سے مالی سال 2026-27 میں پنجاب میں ویئر ہاؤس سہولیات سے آراستہ ریجنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹرز قائم کیے جائیں گے، جبکہ 49 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈھوڈوچا ڈیم راول پنڈی پر سطحی پانی کی صفائی اور فراہمی آب کا منصوبہ بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ڈرینز ریہیبلیٹیشن اور امپروومنٹ پروگرام ان پنجاب 10 ارب روپے کی لاگت سے تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ توانائی کے لیے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 4 ارب 30 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 1 ارب 43 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ توانائی کے مؤثر استعمال، ماحولیاتی تحفظ اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے پیش نظر اس شعبے میں متعدد اہم اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے مؤثر استعمال کے لیے 12 ارب 86 کروڑ روپے کی لاگت سے رینیوبل انرجی ڈیولپمنٹ سیکٹر انویسٹمنٹ پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ 9 ارب 97 کروڑ روپے سے سی ایم فری سولر پینل اسکیم کے تحت 90,000 گھرانوں کو سولر سسٹمز فراہم کیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال میں 90 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 8 ارب 50 کروڑ روپے کے انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن پروگرام کے ذریعے 38 واسا سائٹس और 51 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में 30 मेगावाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए गए। आइंदा माली साल में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की आगाही, पंजाब अप्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी लैब के क्याम की तजवीज, इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन थ्रू इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे जदीद सनती हल पर जदीद सनती हल भी तकरीबन 12 अरब रुपए की मजमूई लागत से इस बजट का हिस्सा है। जनाब स्पीकर, मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कुदरती वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल, आबी तहफ़्फ़ुज़ और आफात से निपटने की इस्तेदाकार को बढ़ाने के लिए पिछले 2 साल से मुसलसल जामे इकदामात कर रही है। यहाँ पर मैं इस अमर का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में पहली बार क्लाइमेट बजट टैगिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया, जिसके ज़रिए तरक्याती मंसूबों और सरकारी अखराजात के मौसमियाती असरात की मुअस्सर निगरानी और जाँच मुमकिन बनाई गई। इस मकसद के लिए 479 अरब रुपए की खतीर रकम माली साल 2026-27 में मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के आगाज से ही मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और फ़िज़ाई आलूदगी में कमी को एक तरजीह करार दिया और इन अहदाफ के असूल के लिए फौरी और मुअस्सर इकदाम का आगाज़ किया। इस शोबे में जितनी भी कामयाबी है वो किसी एक इदारे या महकमे की महरून मिन्नत नहीं, बल्कि ये सब की काविशों का नतीजा है। और इस ज़मीन में वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की तरफ से तमाम मुतलका महकमों, इदारों और टीमों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि बरसों बाद लाहौर का स्याह आसमान दोबारा नीला नजर आया, इस पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार और हमारी तहजीब और सकाफत की शफक भी 20 साल बाद लौट आई। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क्यादत में सूबा पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मॉग के खात्मे के लिए एक जामे और टेक्नोलॉजी पर मबनी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। स्मॉग के तदारुक के लिए माली साल 2025-26 में 123 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ग्रीन पंजाब मैप 1373 हेल्पलाइन, AI चैटबॉट, AI कैमरा 8500, AI कैमरा 67, क्विक रिस्पांस सेंटर्स और पंजाब क्लाइमेट वॉच के ज़रिए निगरानी और नफाज के निज़ाम को जदीद बनाया गया। फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए स्पार्को और नासा के सैटेलाइट मॉनिटरिंग, 5000 सुपर सीडर्स, 15000 ज़रई मशीनरी यूनिट्स, 30 अरब रुपए के बिला सूद मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के नतीजे में स्टेबल बर्निंग के वाकियात में 65% कमी आई। सनती आलूदगी के खात्मे के लिए 13,560 सनतों और तकरीबन 8,000 भट्टा खश को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक किया गया, जबकि 96% सनतों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब किए गए। ग्रीन मोबिलिटी के फ़रोग के लिए 2,000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसें, 1,20,000 टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पुरानी और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों की बायबैक स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है। शहरी इलाकों में धूल के तदारक, हडियारा ड्रेन की बहाली, 2,53,00,000 दरख्तों की शजरकारी, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ इकदाम, 5,112 स्कूलों में वेस्ट वाइज प्रोग्राम और महमूद भुट्टी को ग्रीन एनर्जी जोन में तब्दील करने जैसे इकदाम से माहौल दोस्त तरक्की को फरोग दिया जा रहा है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 1,16,000 से ज़ायद शहरी रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि 64% सालाना तरक्याती प्रोग्राम को क्लाइमेट टैग किया गया है, जो एक साफ सरसब्ज और पायदार पंजाब के अज़्म का अमली मुजाहरा है। 4,257 तालीमी मकामात की जांच, 2076 नोटिस और 2,50,00,000 दरख्तों को लगाने से गर्दो गुबार और फजाई आलूदगी में नुमाया कमी आई। मजीद बरां 508 टन प्लास्टिक जब्त किया गया और 5,112 स्कूलों में वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, जिससे साफ सुथरे माहौल और रीसाइकलिंग कल्चर को फरोग मिला। फजाई और आबी आलूदगी के तदारुक और माहौलियाती निगरानी के लिए तकरीबन 32 अरब रुपए की लागत से पंजाब में दर्ज ज़ैल प्रोग्राम मुतारिफ कराए गए हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पंजाब स्मॉग मिटिगेशन एंड रिस्पांस इनिशिएटिव, एयर सेफ ग्रीन बिल्डिंग क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी, 3,70,00,000 रुपए की लागत से पंजाब के 10 जोन्स में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के क्याम का आगाज किया गया है, जबकि आइंदा माली साल में 4,80,00,000 से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की 11 लेबोरेटरियों की तामीर और तौसी का प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। मजीद बना 4,54,00,000 रुपए से लाहौर एयर इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क और 4,74,00,000 रुपए की लागत से एंटी स्मॉग गन्स की तैनाती के जरिए स्मॉग और आलूदगी के तदारुक को मजीद मुअसर बनाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, पंजाब हुकूमत ने जंगलात और वाइल्ड लाइफ के तहफ्फुज़ के जरिए एक सरसब्ज पायदार मुस्तकबिल की बुनियाद रखी है। पंजाब की तारीख में पहली बार फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की गर्ज से शजरकारी की जा रही है, जिसके तहत अब तक 50,859 एकड़ रकबे पर 5,00,000,000 से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 3,75,00,000 दरख्त रवां माली साल के दौरान लगाए गए। हुकूमत ने शजरकारी मुहिम के तहत लगाए गए दरख्तों की मुअसर निगरानी के लिए 100% जियो टैगिंग को यकीनी बनाया है। अगले माली साल में जनूबी पंजाब में 12,000 एकड़ से ज़ायद बंजर रकबे पर दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और GIS के जरिए जंगलात की मैपिंग की गई और सैटेलाइट की मदद से पंजाब की पहली डिजिटल फॉरेस्ट इन्वेंट्री कायम की जा रही है, जो अपनी नौयत की एक मुनफरद मंसूबा है। लगाए गए दरख्तों और जंगलात की हिफाजत के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाई गई है। 1084 फॉरेस्ट हेल्पलाइन को फाल किया गया है। अलावा अजी पंजाब भर में 5 अरब रुपए से जायद मालियत के 1850 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को नाजायज़ कब्ज़ों से वागुजार करवाया गया है। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, AI बेस्ड फायर वार्निंग सिस्टम भी मुतारिफ करवाए गए हैं। शजरकारी, जंगलात, कुदरती माहौलियात निज़ाम की बहाली के लिए 8 अरब रुपए की लागत से CM प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 1,00,000,000 से ज़ायद दरख्त लगाए जा रहे हैं। इसी मकसद के तहत 2,50,00,000,000 रुपए की लागत से DG खान में 7,249 एकड़ बेला इको सिस्टम की बहाली और 2,50,00,000,000 रुपए से पीरोवाल इरीगेटेड प्लांटेशन की बहाली अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत 33 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। मजीद बरह पंजाब हुकूमत ने हाल ही में दरियाए सिंध में जामपुर और नवाई इलाकों के तवील हिस्से और खिता पंजाब में डॉल्फिन मछली की सबसे बड़ी आबादी का मस्कन है। इस इकदाम का मकसद डॉल्फिन मछली की कम होती तादाद के तहफ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इसके अलावा लाहौर में 1 अरब 47 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट वाइल्ड लाइफ हस्पताल की तामीर की जा रही है। सूबा भर में सूबा पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने जदीद AI टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल से वाइल्ड लाइफ सर्वे करवाया और इस सर्वे को इस शोबे की बेहतरी में इस्तेमाल किया। छांगा मांगा उछाली और चमचा और उछाली और चश्मा के लिए 8 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा जारी है, जिसके लिए रवां माली साल में 1 अरब 20 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं, जबकि मरी में 3 अरब 92 करोड़ रुपए की लागत से बांसरा गली जूलॉजिकल गार्डन के मंसूबे पर अमल जारी है। आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 60 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। सफारी जू लाहौर के मास्टर प्लान पर 7 अरब रुपए की लागत से अमल दरामद जारी है। जंगली हयात के तहफ़ माहौलियाती आगाही इको टूरिज्म के फ़रोग के लिए 12 अरब रुपए की लागत से रावलपिंडी में भेर लोई जियोलॉजिकल गार्डन का क्याम, जबकि 2 अरब 50 करोड़ रुपए से जल्लो बर्ड पार्क एक्सपीरियंस जोन एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मुतलका सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। ये इकदाम जंगली हयात के तहफ़ अवामी आगही और माहौल दोस्त सियाहत के फरोग में अहम किरदार अदा करेंगे। थक गए हैं आप? कोई पता चले यार ऑपोजिशन, हाँ फिर मुझे मजा आता फिर तकरीर करने का। कोई नहीं स्पीकर साहब, हमारे भाई हैं,
1: आप अपनी
0: चलता है होता है। जनाब स्पीकर, अवाम से वादों की तकमील के लिए समाजी तहफ़ुज़ के शोबे में माली साल 2025-26 के दौरान सोशल स्पेंडिंग की मद में 361 अरब रुपए खर्च किए गए। ये अमर भी तारीखी है कि माली साल 2025-26 में 20 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी मुकम्मल की गई, जिसके तहत 11 करोड़ से ज़ायद अफराद का समाजी और माशी डेटा जमा किया गया ताकि हुकूमती फ्लाई प्रोग्रामों को मौसर हदफ बंदी और शफाफ फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी तनाजुर में हुकूमत PSER को अथॉरिटी में तब्दील करने जा रही है। इसके साथ ही PSER की तौसी के लिए माली साल 2026-27 में 2 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तंजीम नौ और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि समाजी तहफ़ के प्रोग्रामों की मौसर निगरानी हो सके। जनाब स्पीकर, मजीद बरां रमज़ान निगेबान पैकेज के तहत रमज़ान 2026 में 39 अरब रुपए की लागत से तकरीबन 34 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। अगले साल इस पैकेज के लिए 37 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के तहत 24 अरब 87 करोड़ खर्च किए गए ताकि सनती कारकुनों और कम आमदन वाले 12 लाख खानदानों की बुनियादी जरूरियात के हसूल में मुआवनत फराहम की गई, जबकि माली साल 2026-27 के लिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। रवा साल के अहम मंसूबों में एक मंसूबा हिम्मत कार्ड प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके तहत खसूसी अफराद की मुआवनत के लिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। रवा साल के अहम मंसूबों में एक मंसूबा हिम्मत कार्ड प्रोग्राम भी शामिल है।

स्टॉक कार्ड प्रोग्राम के जरिए 29,265 मवेशी पाल हजरात को माली मुआवनत फराहम की गई, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 4,40,00,00,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद बरहम दीरानी प्रोग्राम के तहत 5,000 मुस्तहिक बेटियों की इज्तमाई शादियों के लिए 1,77,00,00,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 1,70,00,00,000 रुपए तजवीज किए गए हैं। खसूसी अफराद के लिए मसनूई अज़ा, समाती आलात और दीगर मावन सहूलियात की फराहमी के लिए 1,00,00,000 रुपए की लागत से 18,803 मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हुए। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 3,70,00,00,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे 40,000 अफराद मुस्तफीद होंगे, जबकि पंजाब के मुतअद्दिद अज़ला में ओल्ड एज होम्स आफियत के लिए भी 2,06,00,00,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1,00,00,000 रुपए की लागत से मरियम को बताएं प्रोग्राम के तहत माली साल 2025-26 में 13,757 शहरियों को माली मुआवनत फराहम की गई। इमाम मसाजिद की माली मुआवनत के लिए 9,22,00,00,000 रुपए भी सर्व किए गए, जिसके तहत 60,000 आयमा मसाजिद को 25,000 रुपए महाना फराहम किए गए। इस अहम इकदाम के लिए अगले माली साल में 18,50,00,00,000 रुपए की रकम मुख्तस की गई है। समाजी तरक्की के शोबे में माली साल 2025-26 के दौरान अकलियती बरादरियों, ख्वातीन और समाजी शमूलियत के फरोग के लिए मुतअद्दिद इकदामात किए गए, जबकि साल 2026-27 में खतीर रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवां साल में 2,11,00,00,000 रुपए की लागत से गुरुद्वारों, गिरजाघरों, मंदिरों, कब्रिस्तानों और दीगर मजहबी व तारीखी मकामात की तामीर, बहाली और तरक्की के मंसूबों पर काम किया गया, जबकि आइंदा माली साल में भी इसी मकसद के लिए 5,00,00,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसी तनाजुर में CM मिनॉरिटी कार्ड के तहत 3,00,00,000 रुपए की लागत से मुस्तहिक अकलियती खानदानों को माली मुआवनत फराहम की गई। CM मिनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आइंदा माली साल में अकलियती बरादरी को सहूलियात फराहम करने के लिए 4,00,00,000 रुपए की लागत से मुतअद्दिद मंसूबे तजवीज़ किए गए। जनूबी पंजाब और कच्चा के इलाके की पसमानगी के खात्मा, अवामी सहूलियात की फराहमी और पायदार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इकदामात पर अमल पैरा है। सदन पंजाब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट 25,00,00,000 रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में जारी है, जिसके जरिए 6,985 मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद हुए। माली साल 2026-27 में इस प्रोग्राम के लिए 2,50,00,00,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। नौजवानों की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 7,500 नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने के लिए 10,00,00,000 रुपए रवां माली साल में मुख्तस किए गए हैं, जबकि अकलियती तलबा के लिए 50,00,00,000 रुपए की लागत से तालीमी वजायफ और मेरिट स्कॉलरशिप का अजरा भी किया गया है। लेंट के लिए 43,50,00,000 रुपए की लागत से मसीही बरादरी के 32,600 मुस्तहिक अफराद को नकद इमदाद भी फराहम की गई है। अवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने, कुव्वत-ए-खरीद में बेहतरी लाने, मियारी अशिया

0: तुम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: सुनते रहिए FM
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट की शमसी तवानाई के मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत की है। सेनेट और कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी है। पंजाब के इंसदादी दहशतगर्दी के महकमे ने हाजर ठक्के करीब खुफिया इतलाक की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। भारत के गैरकानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिस्वाबे राय कराने के मुतालबे का इरादा किया है। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम को गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के शमसी तवानाई के मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने और इसकी जल्द अज जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने मंसूबे पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शमसी तवानाई के मंसूबे के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी।
1: Hi, this is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.1.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.
6: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
7: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
8: हमसे है रोशन ये जहां,
9: हमसे है

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद
3: रेडियो। I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I only you. 101.

0: 9 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has directed the concerned authorities to expedite the work on 100 megawatt solar power project in Gilgit-Baltistan. The Deputy Prime Minister and the Chinese Foreign Minister during a telephone conversation have underscored the importance of implementing the understandings reached between the United States and Iran. The Interior Minister has urged the Ulema to play their due role in forging harmony among all sections of the society. In the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the All Parties Hurriyat Conference has reiterated the call for holding a free and fair plebiscite in the held territory. The United Nations Security Council has extended the mandate of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan for another year in view of rising security concerns. In the FIFA World Cup matches between Iran and New Zealand, Egypt and Belgium and Saudi Arabia and Uruguay have ended in a draw.
1: This is FM 101.
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: Sunte rahiye FM 101.
6: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

0: 101 FM。
1: अब नजर आने लगा हर सू जमाले मुस्तफा, हर नफस विरदे जुबा सल्ले अला रखता हूं मैं। रहमतल आलमी की खुश जमाली के निसार, दिल में तस्वीरें

आका आपसे कमली वाले आपसे पहले जहां ने खुशको तर कुछ और था, आपके आते ही आलम सरबसर कुछ और था। नूर दर आगोश यूं तो रोज होती थी सहर, आप जब आए तो अंदाजे सहर कुछ और।

मियां उसके गुलाम हो गए दुनिया के बादशाह, जो भी गुलाम अहमद मुख्तार हो गया, जब नूर लाजवाल का इजहार हो गया, जुल्मत कदा भी मरकज अनवार हो

है, आका दिल की दुनिया है, हमारे दिल की दुनिया है के हर आन सजी रहती है। आका दिल की दुनिया है के हर आन सजी रहती है और उनके आने की मुझे आस लगी रहती है। मैं के आवारा नादान और खताकार सही, उनकी निस्बत से मेरी बात बनी रहती है। अरे जिनके दामन में हो, जिनके दामन में हो सरकार के दर के टुकड़े, उनको फिर कौन सी नेहमत की कमी रहती है। जिक्र होता है मेरी बज़्म में उनका यारो, गोया एक नूर की चादर सी तनी रह।

मियां शर्फ इंसान का बढ़ाने के लिए आप आए और फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। शर्फ इंसान का बढ़ाने के लिए आप आए और फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। हमके बेरब्त अज्जा के सिवा कुछ भी ना थे, हमें तरतीब में लाने के लिए आप आए। जबके जब सरे दश्त ना थी कोई शनासा आवाज, हमें कुरान सुनाने के लिए आप आए। अब तो माबूद में रिश्ता कोई सदियों से ना था, अरे ऐसे बिछड़ों को मिलाने के लिए आप आए। हर नबूवत के लिए वक्त पे जाना ठहरा, आप आए तो न जाने के लिए आप।

खुदा के नूर मेरी बहनों रखे दुनिया की रौनकें देखने से कासिर है, जिसका शिकवा नहीं मगर एक ही तमन्ना है कि मैं आपके शहर में आकर गुंबद-ए-खज़रा दे।

0: 101 FM।
1: मौजूद सामिन, आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से मुहर्रम अल हराम की खसूसी नशरियात।

मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से निजात दे।